दि रेडियो नेपाली आङ श्रृङ लामा शेर्पा ने सिरिके कि साङ्गुर सेन्डोनाङ सिलोन बालेन्द्र साहकी आरिङ स्वतक कि क्योन फोकु नुवाकोट कि बिदुर टङ्कियर तेजिन सिपकी सकुल दियो जिनाङ वाय पूर्वाधार यर्गे लोनपो सुनिल लम्साल तङ्क्या नारिङ टोप्ल गाडिल नुवाकोट फ्यु सिलोन साहकी स्वतक कि जोसलेन्सी क्योन फोकु दासा तिव तङ ल्याखुङ तिव जिनाङ सेन वाय दासा तिव जिनाङ प्रिमला सिलोन साहकी कलेला सुरूप मितिवाला तुसोला रङ सुङक्युप क्यान राहत कि टडी क्यान तेरुप्ला तङ नागलुप लाम्तियो याङलुङ जिन्क्योङ क्याने फुथाकबु जप लाकाला हुर्था कि तुप्ला डेलो तुप छकपातिवाला निर्देशन नङ्गुप सेन वाय तुक्राङ क्याने सिलोन साहकी नुवाकोट कि विदुर टङ्कियर कि श्री नम्बर एक सैन्य तालिम केन्द्र कि प्रशासन तङ सुङक्युप छोकपी चोहोतियो तङ क्यान टोङ्गु क्यानङ वाय टोङ्गु किरिमाला पूर्वाधार यर्गे लोनपो सुनिल लम्साल दलेन तेजिन ग्याङसिङ लोनपो डाक्टर विक्रम तिमिसिना बागमती प्रदेश कि लोन्छेन किरण थापा मगर एमबी मक्मी कि मापोन छेन्पो अशोक राज सिग्देला नुवाकोट कि झोङकी चो शम्भु प्रसाद रेग्मी कि क्योन्फोकु मिताङ ल्याखुङ तुई न्याताङकी कोरला ख्यान्थोक नाङ्गुबिन दिसिनाङ गमाला सिलोन साहकी स्वतक तेमा क्योन्फोकु तुई सुङक्युप कि तन्दोकला सुङकी सुङक्युप सकपाती वातेरी लक्लेन क्यान सुङक्युप ताङ राहत कि लाकात्यो हुर्था क्यान कि ओतुप कोरला सामाजिक सञ्जाल तेमा ख्यान्थोक नाङ्गुप सेन वाय रसुवा कि भोटे कोसिला वाउ टोकपी तेमा क्योन फोकु तिवाला एम्बी मक्मी कि सुङक्योप कि ओतुप सेन वाय स्वतक तेमा क्योन फोकु सकुल तेमा आरिङ टोप्ला सुङक्योप क्याउ मिराङप चुनाङला मिराचिक नासा गोलुप जोङकी छागरक सिडियो ध्रुव प्रसाद अधिकारी कि ख्यान्तोक नाङसुङ सुङक्योपला एम्बी मक्मी कि हेलिकप्टर निताङ गिर्की हेलिकप्टर छकपा तिव कैलाश एभरेस्ट फिस्टेल प्रभु सिमरिक ताङ एल्टिच्युड कि हेलिकप्टर तिव लक्लेन क्याउ सेन वाय तन्दासक एम्बी कोर्सुङ मक्मी मिरा निसुगे एम्बी मक्मी निरा मिराङी ताङ सशस्त्र कोर्सुङ मक्मी मिरा चुक्सुम तोन ओतुप सेन वाय सिलिमे छुलोक आयोजनाला लाका कि ओतुप ल्याचेत्पा मिराङी तन्दासेक सुरुङ नाङलाराङ ओतुप ताङ सुङक्योप कि माथोपु सेन वाय रसुवा गढीला ल्याचेत्पा मिरा चो लाका कि ओतुपिन सुरुप थो तन्दासेक तेन्तेन कि माथोपु सेन वाय स्वतक तेमा बेत्रावती टिमुरे ताङ मैलुङ कि खाङबा तेजिन कोर्सुङ मक्मी ताङ ठोटेन पूर्वाधार ताङ लाम्तेवाला क्योन फोकु सेन वाय धुक्राङ क्याने बोटिकोसी सकुल्ला तोरुप मितिवा छोरुप्ला सुङक्योप कितुप्ला ताङ राहत कि टडी कितुप्ला तोङ दिनताङ सैजिताङ मिरा च्याङा सुङक्योप ल्याचेत्पतिव लक्लेन क्यान ओतुप सेन वाय राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तेजिन टडिक प्राधिकरण कि उपसचिव रामबहादुर केसी कि ख्यान्थोक नाङसिन क्योन फोकु सखुल्ला एम्बी कोर्सुङ मक्मी तोङ सुमताङ सै सुमताङ च्याप्गे एम्बी मक्मी कि तोङ निताङ सै सुमताङ ङपचुङा आङाताङ सशस्त्र कोर्सुङ मक्मी बल नेपाल कि तोङ चिकताङ सै दिनताङ सिपचुस्याङ सुङक्योप ल्याचेत्पति लक्लेन क्याउ सेन वाय बोटेकोसिला वाउ स्वतक तेमा क्योन फोकु तोरिप तिवला सोलुप ताङ सुङक्योप कितुप्ला कालेला सुरूप तिवला राहत ताङ रोक्रम कि टडी कोर्ला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कि छोक्सो रविला निसाने कि गोठितला सोखातेरी कि सर्वदलीय सक्दु देन ओतु सेन वाय सोखातेरी कि सक्दु कि दाङ बोटेकोसिला वाउ स्वतकी जोसलेन्सी रसुवा नुवाकोट दादिङ गोर्खा चितवन ताङ नवलपरासी जोङखाला मितुई फक गलुप ताङ खाङबा तिव रम्बु कोर्ला सेम्दु क्यानाङिन तेरी कि हुर्ता क्याने सुङक्योप ताङ राहत कि लाका गोजुकोला सु हारिङ सक्दु कि तन्दी कले कि नेताङला दगदगपी सकुल्ने काङ थुपथुप रोक्रम कि गोला सोखा तेरी ताङ सकपातीवाला सु नगिन दगदगपी खेपसङ कि तन्दोकला लाका कि तुम्याङला सुगेप नाङ वाय हारिङ कि सोखातेरी कि सक्दु कि रङजुङ कले टडिकला दु ट्याङ्गा ताङ उङ्गु पल्जोर रोक्रम तिव ट्याङ्बु क्याने टडी कि तुप ख्यान्थोक नगिन सोखातेरी ताङ रङ्युल ताङ छिगेल्ला जुनो तुप मिमाङ तिव तेरीला एम्बी सुङकी आधिकारिक कोष सिलोन रङजुङ कल्या सुङक्योप कोष तेजिने सुङकी तेन्तेन क्याउ आधिकारिक बैङ्क खाताला तिरङ पल्जोर ट्याङ्गा रोक्रम कि गोला सिउवाए सक्दुला नाङसित लोन पोसुदन गुरुङ कि सुङक्योप कि तन्दोकला हेलिकप्टर नि सुङी लक्लेन क्याउ तन्दा सेकला मिमेरा सही चिकताङ दिन्छुथोन सुमकी फुङबुङ यौ ताङ मिमे सै गु तोन ओतुप ताङ दिथो याङलुङ फर्थोपु ख्यान्तोक नाङ वाय लोनपो गुरुङकी ट्याङ्गा अरबची थाम्बा बजेट पेउ नाङला तान्दा रङजुङ कल्या सुङक्योप पोसला ट्याङ्गा अरबनी ताङ नाङसित लोन खाङला ट्याङ्गा अरबची पेउ ख्यान्तोक नाङसुङ सक्दुला रासोपा कि छोक्सो रवि लामे छाने कि सुङक्योप ताङ राहत कि तन्दोकला सिगेल्ने साङ रोक्रम मुङिन ओतुप ताङ नासा गलुप मितुई फुङबु सिगेकु लाका गोजु ख्यान्तोक नाङसुङ
नोर लोनपो डाक्टर स्वर्णिम वाकले कि भोटे कोसिला वाउ शोतोक तेमा क्यून फोकुतियोला सुंग्योप तंग राहत कि तोंदोकला खक्षन पोसी ने लाका कि तुप सुंग लोनपो वाकले कि शेतुप नंगसिन सिलोन रंगजुंग कले सुंग्योप कोसला टेंगा अरब नी करोड़ सुमचु सो जी ओ तुप नांगला नंगसित लोन खांग कि तोंदोकला अरब चिक तंग करोड़ चुपदिन पेउ सुंग सुंग शोतोक तेमा प कि सांबा निशुंगा चोकेला क्यून फोकुतंग सही दिन मेगावट क्षमता कि छुलोक आयोजनाला क्यून फोकु खेतोक नगिन लोनपो वाकले कि सुंग्योप तंग राहत झुकला क्यून फोकु सांबातंग पूर्वाधार तिओ यंगलुंग हुर्ता क्याने जोप खेन्तोक नांगसुंग क्यून फोंगु पूर्वाधार तिओ यंगलुंग जोप तोंदोकला ग्याकार ग्यानाक जापान एसियाली विकास बैंक तंग याम्बा जम्बुलिंग सोकपाने रोक्रम कितुब खेलेन वाउसंग लोनपो वाकलेकी खेन्तोक नांगसुंग शुंकी बोटे कोसिला वाउ शतक तेमा क्यून फोकुतियोला रोक्रम कितुप से मोतुप मितुई तोंदोकला रोक्रम दुतुपला दासासुम तेन तेन क्यान वाय रंगजुंग काले न्युंगमो जॉब तेजिन टडिक प्राधिकरण की शेतुप नंगसिन शिगेलने नम्रु तेमा उंगुप राहत की चालक तियो त्रिभुवन जम्बुलिंग नम्रु थांगला ओतुप ग्यालियोंग आपातकालीन गोदाम की खांगबाला तुग्रां क्याने नुआ कोट की बट्टारला ओतुप एमबी मैथिली ब्यारेक तंग धादिङ की बैरेनीला ओतुप एमबी माक्मिकी ब्यारेकला सिग्याक थपु सेनवाय तुग्रां क्याने ट्याङ्गा रोक्रम कितुब्ला नासा मोतुप मितुई सिलोन दैवी प्रकोप सुङ्क्योप कोसला ट्याङ्गा कल्ताङ थपु सेनवाय सिसी बैङ्क नासोक तेजिन राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क कि क्युआर कोड तेमासङ ट्याङ्गा रोक्रम कि थपु टरिक्याउ प्राधिकरण कि सेतुघिन रसुवा कि बोटे कोसी चाङबुला वाउ शतकला खेल्ने तान्दा स्याक बिमेर सही चिकताङ दिन्छु थोन्दिन नासा गलुप सेनवाय एमबी कोर्सुङ मकमिकी तान्दा स्याक अम्पुङ सिप्चु सिया चिक जन्दा टुक्चुरे टुकचुरिया गु पुम मेरा दिन कि ङोसी पेउ तङ मेरा ङपचु कि ङोसी माप्यौ खेन्थक बिन वाय सीता अनला खेलुक त्रिशुली तङ नारायणी चाङबुला आरिङ टप

लसो फ्याफुल्ला तिमी मञ्जुश्रीसम्म त 2862 तालो यान्देलाला छेपाचुइसेङ विक्रमसम्म 2083 साल भदौलाला छेपाचुइसेघिक नारे बिहिबार चु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ साङ्गुरी राङ्दा डेन्बुला ङा सूर्य मोक्तान रसुवा जुङला भोटे कोसी गान्धेरी खाप भाल्डी परप्तासी शिवमी दाँदे दोनामा गार्जङ यिसे मेन्दो गाँचुई भ्रे छो बमला राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तेन व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अनुसार रसुवा जोङ्री मेन्दोङी नुवाकोट जोङ्री मेन्दो चुइसेङी धादिङ जोङ्री मेन्दो गिचुइसेङिस गोर्खा जोङ्री मेन्दो गिचुई चितुवन जोङ्री गार्जगिक्से मेन्दो भ्रे तनहु जोङ्री मेन्दो चुइसेङी नवलपरासी स्यार जोङ्री मेन्दो ढुचुइसेङी थेन नवलपरासी जो नुप जोङ्री मेन्दो चुइसेङ ङाला शिवलुइरो स्यापमला तिनी माभा मिगतेदा उद्धारला बारी गोर ढुचुइसे कु हेलिकप्टर से उडानलामा गार्जसोम्से मेन्दो गाँचुई गिक मिला उद्धारला बमला बेसी प्राधिकरण से पाङबमला प्राधिकरणला अनुसार अझैनुन गार्जकु से मेन्दो चुइमी मासेटी बमला थेनिकादेरी नेपाल प्रहरीलाई मेन्दो गिचुइसे भ्रे नेपाली सेनालाई मेन्दो ब्लिचुइसे ब्लि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई मेन्दो चुइसे सोम भन्सार गेदिमलाई मेन्दो चुइसे घा अध्यागमन गेदिमलाई मेन्दो ब्लि रसुवा जोङलाई गार्ज गिक से मेन्दो डुचुई गिक नुवाकोटला मेन्दो गिक मि मासिटी बमला फिर्क्याप्युल्ला गार्जङा मेन्दो चुइसेङिस ह्युरी टिबा नेपाली कोर्बा रि खाबाका देलासि गार्ज गिक से मेन्दो गिचुइसेङिस मि मासिटी बमला काइब्लोन भालेन्द्र साहसले तिनी भालसे प्रभावित तब नुवाकोट जोङला विदुर नगरपालिका थिएन ख्याकुल्ला थुम कोर्सी च्यासु बमला कोर्सी च्याबली छ काइब्लोन साहसे 200 विस्थापित तानाला बा दिन्थे मेदा योनबीमा योन राहत भोलाबारी नुङमा सडक ग्याम थिएन पूर्वाधार गर्दै शोभ सोसी सिंहबारी पुनर्स्थापना लाभ गे योनबीमा योन लाबारी स्थानीय प्रशासन थिएन सरोकार थानमा निकाय गर्दै निर्देशन दोन्छु बमला चुबीमा गाछ काइब्लोन भालेन्द्र साह रसुवा जोङला भोटे कोसेरी खापा भालसे तानाला बा छेती च्याबारी महाबमी माइबारी तेन उद्धार लाभ गेदा प्रभावकारी सोबारी विषय नुवाकोट जोङरी तो बुबा काइब्रन साहब विदुर नगरपालिका रिमोबा श्रीनमर गेक सैन्य तालिम केन्द्र रि दोषी प्रशासन थेन सुरक्षा निकायला ग्रेन पगादेला ब्रिफिङ रि दान्छा बुबा काठुरी पूर्वाधार विकास ब्लोन सुनिल लम्साल सूचना थिएन संचार ब्लोन डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा बागमती प्रदेशलाई ग्रेन ब्लोन किरण थापा मगर नेपाली सेनालाई ग्रेन सेनापति अशोकराज सिग्देल नुवाकोटलाई ग्रेन जोङ अधिकारी शम्भु प्रसाद रेग्मी थिएन जोङ प्रहरीलाई ग्रेनपो बिपिन रेग्मिसे मिलुई थिएन भौतिक क्षतिलाई फेरि जानकारी दोन्छु बम्बमा चुपीमा गाछ काइब्लोन भालेन्द्र साहसै भालसे प्रभावित तापका दिँदा योनबीमा योना उद्धार लबारी ह्युल्ला बेनान संयन्त्र परिचालन लसी जिन्मम्बला विषय सुङ्छु बम्बमा काइब्लोन साहसै ह्युल्ले खालैसे मान्नुन आमानमा विपत्तिलाई दुहिरी सरकार चाहिँ उद्धार लबारी थिएन राहत बोलाबारी माइबरमला विषय सुङ्छु बहिन्ना रसुवा जोङरी खाबा ग्रेन भालसे प्रभावित तब ह्युलबाला उद्धार लबाताङरी नेपाली सेनालाई हेलिकप्टर से तिनी सिओएनसे दान्दे दोनामा टिमुरे धुन्चे थिएन मैलुङ ग्याम लोलो लोलो गोडु ह्युल्ला मेन्दो ब्लिचुइसे गा ह्युल फिर्का ह्युल्ला ह्युलबाला छ्याम्रे गार्द सोम्से मेन्दो सोम्चुइसे ढुदा हवाई उद्धार लपमला नेपाली सेनालाई तोङ्ली फौज परिचालन से भालले परप्तसी घाइते तबा थिएन प्रभावित तबाका दिँदा माइबा थिएन उद्धार लबा आपतकालीन मानसिक माथिन राहत बोला गेलाबन मोला विषय सेना से पाङबा मोला रसुवा जोङला भोटे कोसेरी खाबा भालसे घाइते तानाला बा गदेदा नेपाली सेनालाई छ्याम्रे श्यान सुरक्षा निकाय से उद्धार लसिटी बमला भालसे प्रभावित तबा ग्ला ग्याम मेन्दो गाँचुइला उद्धार लाबा नाङ्री मेन्दो गिकमी शिवमोला विषय ग्रेन्जोङ अधिकारी ध्रुव प्रसाद अधिकारी से सुङ्छु बहिन्ना उद्धार लाबारी नेपाली सेनालाई गोर्गी निजीथुम्ला हेली कैलास एभरेस्ट हेली फिस्टेल प्रभु स्मृक्थेन अल्टिच्युट हेलिकप्टर परिचालन लाबमला ग्रेन्जोङ अधिकारी से पिनमा दान्दी दोनालाई विवरण दि मेन्दो गिचुइसे भ्रे नेपाली प्रहरी मेन्दो गि नेपाली सेना थिएन मेन्दो चुइसे सोम सशस्त्र प्रहरी मासिटी बम्बला भालसे चिलिमे जलविद्युत आयोजना रि गेलाबा मेन्दो घामी अझै सुरुङरी मासिटी बम्बला बेसी पाङ बम्बला र सुवागढी रि गेलाबा घाते कर्मचारी केलापन बुबा घाते माझी बिबला दान्दे दोना थाता परी खम्बारे भालसे बेत्रावती टिमुरे मैलुङला दिमगदै प्रहरी थिएन मिलोई ला पूर्वाधार थिएन सडक पूर्वाधार गदे त क्षति तानाला बम्बला चुनाडुलासी भोटे कोसेरी खाबा भाल प्रभावित थुम्री माबा मि माइबारी उद्धार लबारी थिएन राहत व्यवस्थापन लबारी तुङ्गिस गाजब्लिसे मेन्दो चुइसेङा सुरक्षाकर्मी परिचालन लाबम्बला राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण थिएन व्यवस्थापन प्राधिकरण ला रो लोन्छेन रामबहादुर के
से भाल प्रभावित थुम्रे नेपाल प्रहरीला तोङसोम ग्यार्जसोम मेन्दो चुइसे ब्रे नेपाली सेनाला तोङी ग्यार्जसोम मेन्दो गा चुइसे गाथेन सशस्त्र प्रहरी बल नेपालला तोङ्गिक ग्यार्जङिस मेन्दो ब्ली चुइसे निस सुरक्षाकर्मी परिचालन लाबम्बुला विषय सुकबम्बुला भोटेको चाहिँ गान्धीरी ताबा छेती भावमिदा माइबा थिन उद्धार लबा राहत बोलबा थिन पुनर्स्थापना लबा ताम्रे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीला चोहो रवि लामी छानेला मोइजेन्डे तिनी टिब चिसाङसे उद्धार लबा थिन राहत बोलाभरि बेनन ग्लेठिम दल डिगपरि मोइजेन लासु बम्बला तिनी टिब बेनन ग्लेठिम दललाई चिसाङसे भोटेको चाहिँ गान्धीरी खापा भाल रसुवा नुवाकोट धादिङ गोर्खा चितवन नवलपरासीलाई छ्याम्ने स्यान जोङ्री नुन भिलुइ थिन भौतिक संरचनालाई विनाश ताबासे दुङ्गाल ङाम्छिवान बेनन सक्रियतासी उद्धार लबरि थिन राहत बोलाबा गेरी रोला सिपिनमारी मोइजन लासुबहिन्न बेनन दल लचिसाङसे विपद व्यवस्थापन रि राङराङला थुमग्यामसे खाम्दे दोना बेनन ग्लेठिम दल थेनाङला सङ्घ सङ्गठन थिएन मुलमिदा भोइजेनला पनि विपदलाई दुई रिलाबा रो लोकप्रियता अथवा ग्लेठिम स्वार्थलाई माध्यम सबरी आता बिसिनन् गोपन गर्दैछ सुकबम्बुला चिसाङसे विपद व्यवस्थापन लाभारी रूपटाङ्ग पारदर्शी थिएन व्यवस्थित सबरी बेनन पार्टी युलनाङ थिएन युल फिर्का मोबा युलबादा नेपाल सरकारलाई आधिकारिक काइब्लोन दैवी प्रकोप उद्धार कोष अथवा सरकारसे तोपलाबा तोकलाबा आधिकारिक खातारी चकेन टाङ्गहरू पारिनन् विशेष मोइजेल लाबम्बुला चिसाङरी दिम्लोन सुदन गुरुङसे उद्धार लाबारी गोर्ङी चुइसे घि हेलिकप्टर परिचालन लाबा दान्दीदोनामा ग्यार्जिङिसे मेन्दो गाँचुइ भ्रे मि बिमा लामा शिवा थेन्ना लुइरो स्यापा छु आछु ग्यार्जकु मि माबा रिपोर्ट खाबा तेन्चु सङ्ख्या अझै नुन लेबरी खाम्स्याल मोला बेसी सुङ्क्षेप मोला चुनाडुला चाहिँ नोर्बोन डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले चाहिँ पुनर्निर्माण लाबारी राहत बोलाबारी थिएन विपद व्यवस्थापन लाबारी अर्ब चुइ टाङ्गा फेवाला छ्याम्रे विपद उद्धार कोश्री मोबा अर्ब यी थिएन दिम्लोन खाङ्दा अर्ब गिक डेबो पिनबा मोला बेसी सुङ्क्षेप मोला बागमती प्रदेशलाई ग्रेनब्रोन किरण थापा मगर चाहिँ भोटेको चाहिँ रिखाबा भाल थिएन दुई रिपर्प तसै माबा गादे अल्पत्र तसै सम्पर्क रिखाबरे आखाम्बा कादेला दिम्थेमे सय सुरक्षा निकायदा साङ्गिर पिनमारी मैजन लाबा मलाई तिनीश्वरी नुवाकोटी भाल चाहिँ क्षतिताना लाबा थुम खोर्बा दुईरी ग्रेनब्रोन थापा मगर चाहिँ मोबाइल नम्बर 9851081876 9852311346 थिएन 9852311346 रि सम्पर्कलाई बारे मैजन लाबा हिन्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण थिएन व्यवस्थापन प्राधिकरण से भोटिकसी गान्धीरी खाबा भार प्रभावित थुम्री ट्रक चुई चाबासै थिएन क्वानबा सेगते पुइबमुला विषय पाङपाङमुला प्राधिकरणलाई रोलोन्छन रामबहादुर केसीसे भार प्रभावित थुम्री चाउचाउ बिस्कुट स्लिपिङ ब्याग म्याट्रिक्स ब्ल्याङ्केट रङमा सेगते पुइबमुला विषय सुङ्छु बहिन्न चरणलाई भार प्रभावित थुम्री तोङचुई सेङ्घा लिटर डिजल थिएन तोङचुई सेङ्घा लिटर पेट्रोल नुन पुइबमुला विषय प्राधिकरण से पाङपाङमुला ऊर्जा किनोर थिएन सिँचाइ ब्लोनखाङसे भाल प्रभावित थुम्री स्यान वैकल्पिक ऊर्जा बोर्सी नाङसल नाबारे बाङ्ला बम्बुला भालसे गोर्चुइसे घि जलविद्युत आयोजना रि क्षतितनाला बसे तिलमा हेन्से बेनन ग्लारी नाङसल नाबारे आखाम्मना टिपम्बुला चुनन ताङ्री ऊर्जा ब्लोन विराज भक्त श्रेष्ठसे रसुवा नुवाकोट थिएन धादिङ जोङ्री वैकल्पिक ऊर्जा बोर बम्बुला विषय सुङ्छु बहिन्न ऊर्जा ब्लोनखाङसे वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रलाई रोरी भाल प्रभावित थुम्री ग्यार्जङ्गा सोलर पावर बैङ्क पुइबमुला भाल चाहिँ त्रिशुली रिमोबा 220 केबीला स्वम बी हब सब

यी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास थिक विजय झासा सुनल झा मैथिली भाषामा समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पोजेल विपद पीड़ित नागरिकके उद्धार खोज आ राहत कार्यमे सहयोगार्थ अपन एक महिना बरोबरिक पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री देवी प्रकोप उद्धार कोषमे प्रदान कर्ता। राष्ट्रपति पोजेल रसुवाके भोटेकोशी नदीमे आयल भीषण बाढ़िके कारण जनधनके अधिक क्षति भेलासँ ई पारिश्रमिक कोषमे प्रदान कयने राष्ट्रपतिके कार्यालयके प्रवक्ता रितेश साक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमे उल्लेख अछि। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव रसुआ के भोटेकोशी नदी में यह भादव 10 गते बुध दिन आयल बाढ़ के कारण रसुआ नुआकोट धादिंग लगायत जिला में अधिक जनधन के क्षति भेल घटना प्रति दुख व्यक्त कयलनि अछि। आय विज्ञप्ति मार्फत आय विपद के अकाल में मृत्युवरण कयने नेपाली नागरिक विदेशी पर्यटक तथा तीर्थ यात्री सब प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करैत ओ दिवंगत आत्मा सभक चिर शांति के कामना कयलनि अछि। विपद में पड़ल व्यक्ति सभक उद्धार बेपत्ता भेल व्यक्ति सभक खोजी तथा घायल भेल व्यक्ति सभक शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करैत उपराष्ट्रपति यादव घायल भेल व्यक्ति सभक इलाजक लेल सबसँ आग्रह कयलनि अछि। एक दोसर के सहारा या सहयोगी बनबाक सामूहिक कर्तव्य भेल उपराष्ट्रपति यादव बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित नुआकोट के बिदुर तथा लगपास के क्षेत्र के स्थलगत निरीक्षण कयलनि अछि। बुध दिन भिनसर 9:30 में सड़क मार्ग होइत पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लम्साल सहित नुआकोट प्रस्थान के प्रधानमंत्री शाह प्रभावित बस्ती के भौतिक अवस्था तथा बाढ़ से भेल क्षति के अवलोकन कयने छलथि। निरीक्षण पश्चात ओ आइए काठमांडू घूरल छथि। बुध दिन रसुआ स्थित भोटेकोशी नदी में आयल बाढ़ से नदी तटीय क्षेत्र में अधिक क्षति पहुँचलाक बाद प्रधानमंत्री शाह उद्धार तथा राहत कार्य के प्रभावकारी बनेबा लेल निरंतर सक्रिय रहल छलथि। बाढ़ आयल लगले उच्चस्तरीय बैठक आह्वान कऽ माथहात के निकाय के आवश्यक निर्देशन देने ओ बिदुर तथा आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के प्रत्यक्ष अवस्था के संदर्भ में जानकारी लेने छलथि। सूचना तथा संचार मंत्रालय रसुआ नुआकोट धादिंग लगायत क्षेत्र में प्राकृतिक विपद की घटना से संबंधित मानवीय रूप में संवेदनशील तस्वीर श्रव्य दृश्य तथा अपुष्ट सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण नहीं करवाक लेल संचार माध्यम आ सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता से अपील कलक अछि। मंत्रालय विपद के विषम परिस्थिति में संचार माध्यम तथा आम नागरिक से प्रवाह हो वाला सूचना उद्धार राहत तथा जनमानस में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ला कारण जिम्मेवार आ संवेदनशील ढंग से सूचना संप्रेषण करवाक लेल आग्रह कलक अछि। मंत्रालय के सचिव एवं प्रवक्ता उदय बहादुर राणा मगर द्वारा जारी विज्ञप्ति में विपद से भेल क्षति उद्धार तथा राहत संबंधी समाचार तथा सूचना प्रकाशन व प्रसारण करित काल गृह मंत्रालय जिला प्रशासन कार्यालय सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति जेहन आधिकारिक निकाय से प्राप्त सूचना के मात्र आधार बनेबाक लेल अनुरोध कयल गेल अछि। तहिना अपुष्ट कपोकल्पी तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग कऽ कऽ सृजित भ्रामक सामग्री या सर्वसाधारण के त्रसित बनेबाक किस्म के समाचार तथा अफवाह संप्रेषण नहीं करबाक लेल सेहो मंत्रालय आग्रह कयलक अछि। मंत्रालय सामाजिक संजाल में विपद के हृदय विदारक घटना तस्वीर श्रव्य दृश्य आ विवरण पोस्ट तथा रिपोस्ट नहीं करबाक लेल अनुरोध कयलक अछि। एहि प्रकारक सामग्री से मृत्यु भेल व्यक्ति के परिवारजन के थप मानसिक पीड़ा हेबाक कारणे पीड़ित आ परिवार प्रति मानवीय संवेदनशीलता अपनेबाक लेल मंत्रालय जोर देलक अछि। रसुआ जिला में आयल भोटेकोशी के बाढ़ से अधिक जनधन तथा भौतिक संरचना के क्षति आ विदेशी नागरिक सेहो बेपत्ता भेल विवरण प्राप्त भेलाक बाद परराष्ट्र मंत्रालय विदेशी नागरिक के खोजी उद्धार तथा कंसुलर सहयोग लेल आपातकालीन प्रतिकार्य टोली गठन कयलक अछि। मंत्रालय आई सूचना जारी करे तत्काल प्रभाव से गठन कयल गेल ERT बाढ़ से प्रभावित बेपत्ता व घटना से संबंधित विदेशी नागरिक के खोज तथा उद्धार सूचना के प्रमाणीकरण तथा कंसुलर सहयोगक लेल मंत्रालय में केंद्रीय समन्वयकारी निकाय के रूप में काज करबाक जनौलक अछि। मंत्रालय के हिसाबे विदेशी नागरिक संबंधी आवश्यक सूचना संकलन संबंधित निकाय से समन्वय तथा परिवार आ कूटनीतिक नियोग के आवश्यक जानकारी उपलब्ध करबाक लेल ERT सहजीकरण करत। विदेशी कूटनीतिक आयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्था बेपत्ता व्यक्ति के परिवार तथा सर्वसाधारण के रसुआ के बाढ़ से संबंधित प्रभावित व बेपत्ता विदेशी नागरिक के बारे में कोनो सूचना भेला पर ERT के हॉटलाइन व ईमेल मार्फत जानकारी करबाक लेल मंत्रालय आग्रह कयलक अछि। ओहि के लेल +9 77 9 7 4 4 4 4 1 2 2 7 आ अहिना 97
444-41-228 में आपातकालीन हॉटलाइन व्हाट्सएप मार्फत संपर्क कायल जा सकैया। दोसर नंबर में भोर 7 बजे से रात 10 बजे धरि संपर्क कर सकबाक मंत्रालय जनौलक। मंत्रालय विवश संबंधी अपुष्ट सूचना तथा विवरण प्रसारण नहीं करे वा घटना के बारे में जानकारी लेल आधिकारिक माध्यम में निर्भर रहबाक लेल सबसे आग्रह कयलक। भोटे कोशी में आयल बाढ़ से रसुआ जिला में अधिक क्षति भेलाक बाद प्रभावित क्षेत्र में खोजी तथा उद्धार काज जारी रहल समय परराष्ट्र मंत्रालय विदेशी नागरिक से संबंधित सूचना तथा उद्धार काज के प्रभावकारी बनेबाक लेल ईआरटी गठन कयलक। मंत्रालय घटना के अवस्था के बारे में समय में आधिकारिक जानकारी तथा अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक करबाक जनौलक। भोटे कोशी बाढ़ से क्षतिग्रस्त संचार टावर सबके सुचारू कयल गेल। बाढ़ से क्षति भेल विभिन्न जिला के टावर मरम्मत के बाद पुनः संचालन कयल गेल सूचना तथा संचार मंत्रालय जनौलक। रसुआ के न्यू पाने चौर आ रामचे के रिपेयर साइट में हेलीकॉप्टर से जेनरेटर तथा बैटरी पठाकर टावर मरम्मत का सेवा संचालन कयल गेल। रसुआ के धुंचे नुआकोट के विदुर बस पार्क बटर मदानपुर तथा धादिंग के बैरेनी आ ठमिल डाडा क्षेत्र में जेनरेटर फ्यूल तथा प्राविधिक जनशक्ति परिचालन का सेवा संचालन करवाक प्रयास मंत्रालय कर रहल। नेटवर्क व्यवस्थापन के लिए संचालन में रहल BTS में कवरेज क्षमता वृद्धि ऑप्टिमाइजेशन का सेवा प्रभावकारी बनाल गेल। प्रभावित सेवाग्राही के लिए उपलब्ध निःशुल्क सुविधा के अवधि थप 3 दिन विस्तार कयल गेल। प्रभावित क्षेत्र में यह भादो 14 गते धरि वॉइस कॉल निःशुल्क आ प्रतिदिन 2 GB डाटा आ 50 SMS निःशुल्क कयल गेल। रसुआ स्थित भोटे कोशी बाढ़ पश्चात संपर्क विहीन भेल दांग के 22 मध्य 5 गोटे संपर्क में आयल जिला प्रशासन कार्यालय जनौलक। प्रमुख जिलाधिकारी निश्चल राज पांडे के हिसाब से तुलसीपुर उप महानगर पालिका तिलक चौधरी आ राम कुमार चौधरी, राजपुर गांव पालिका के गोपाल चौधरी आ बुद्धिराम चौधरी तथा रोलपा घर भ तुलसीपुर रहताल ध्रुव बूढ़ा मगर संपर्क में आयल छथि आ ओ सकुशल रहल जनाल गेल। जुमला के पाताराशी गांव पालिका से रोजगारी के लिए रसुआ पहुंचल 20 गोटे संपर्क में आयल। रसुआ के उत्तरी सीमा में बुध दिन भिनसरे भोटे कोशी नदी में आयल बाढ़ पश्चात पाताराशी के 76 गोटे संपर्क विहीन भेल जानकारी प्राप्त भेलाक बाद खोजी कार्य कला पर अखन धरि 20 गोटे सकुशल रहल। जानकारी सहित संपर्क में आयल गांव पालिका के अध्यक्ष पूर्ण सिंह बोहरा अय के जानकारी दिलन। रसुआ के भोटे कोशी नदी में आयल बाढ़िक कारण अखन धरि 289 गोटा के मृत्यु भेल। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के सह प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक शैलेन्द्र थापा रसुआ में 3, नुआकोट में 12, धादिंग में 29, गोरखा में 29, चितवन में 121, तनहू में 16, नवलपरासी पूर्व में 65, नवलपरासी पश्चिम में 14 गोटा के सब भेटल जानकारी दिलन। हुनक हिसाब से अखन 13,295 टा सुरक्षाकर्मी परिचालन कयल गेल। जय मध्य नेपाल प्रहरी 7,250, नेपाली सेना 4,200 आ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के 1,845 उद्धार खोज आ राहत में परिचालन कयल गेल। आयु उद्धारक लेल 69 हेलीकॉप्टर के उड़ान मार्फत 351 गोटा के उद्धार भ चुकल प्राधिकरण जनौलक। अखन 9 से 10 गोटे संपर्क विहीन रहल। जय मध्य नेपाल प्रहरी के 28, नेपाली सेना के 44, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के 13, भंसार कार्यालय के 15, अधिगमन कार्यालय के 4, रसुआ के 161, नुआकोट के 1 संगे विदेशी नागरिक 517 गोटे आ नेपाल घुमायल विदेश में रह वाला नेपाली नागरिक 127 गोटे संपर्क में रहल। रसुआ स्थित नेपाल चीन सीमा क्षेत्र से बह वाला भोटे कोशी नदी में आयल बाढ़ से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के केंद्रित कर खोज उद्धार आ राहत कार्य के तीव्र बनाल गेल। नेपाली सेना के कमांड में सशस्त्र प्रहरी बल आ नेपाल प्रहरी के संयुक्त टोली आई भिनसरे से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में फंसल नागरिक के उद्धार हरा रहल व्यक्ति के खोजी आ विस्थापित के राहत देव क्रियाशील रहल सैनिक प्रवक्ता राजा राम बसनेत अय के जानकारी दिलन। सेना रसुआ के सैफरुंग बेसी टिमुरे आ मैलुंग क्षेत्र में फंसल स्वदेशी तथा विदेशी 120 गोटे के हवाई उद्धार कलक। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 2,350 सैनिक परिचालन भेल प्रवक्ता बसनेत अय के जानकारी दिलन।
भोटे कसी नदी में पुनः बाढ़ के जोखिम देखल गेला पश्चात निचका तटीय क्षेत्र के बासिंदा के उच्च सतर्कता अपनेबाक लेल आग्रह कयल गेल अछि। जल तथा जल स्रोत अनुसंधान केन्द्र जारी केने सूचना हिसाबे चीन दिस सॅ प्राप्त भू उपग्रह तस्वीर तथा प्रारंभिक विश्लेषण के आधार पर बुध दिन आयल बाढ़ के उद्गम स्थान लगपास के क्षेत्र में ताल बनल जनाल गेल अछि। एहि ताल में पानी के सतह अधिक फूटा के जोखिम रहल सूचना में उल्लेख अछि। एहि अवस्था के ध्यान में रखैत दोसर सूचना जारी नहीं भेल धरि भूटेकोसी नदी के निचका तटीय क्षेत्र में बासिंदा यात्रु उद्धार में खटल गेल उद्धारकर्ता तथा संबंधित सबके विशेष सतर्कता अपनेबाक लेल आग्रह कयल गेल अछि। बीतल सूचना में नदी किनार तथा अन्य जोखिम युक्त क्षेत्र सॅ सुरक्षित स्थान में रह संभावित बाढ़ के जोखिम के गंभीरतापूर्वक लेबय लेल अनुरोध कयल गेल अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवासँ सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

भावनाएं। ये पहला पत्र है अमृत जोशी जी का पोखरा से। लिख रहे हैं, प्रिय मधुरिमा परिवार नमस्कार, मैं पोखरा से हूँ। रक्षाबंधन नज़दीक आते ही मुझे अपनी बहन की बहुत याद आ रही है। मैं इस समय रोजगार के सिलसिले में विदेश में हूँ। हर वर्ष बहन मेरे हाथ पर राखी बांधती थी और वो पल मेरे लिए बहुत खास होता था, लेकिन इस बार ये अवसर नहीं मिल पा रहा है। बहन द्वारा भेजी गई राखी हाथ में बांधते ही घर परिवार और बचपन की यादें आंखों के सामने आ जाती है। दूरी ने भले ही हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है, लेकिन बहन के प्रति मेरा प्यार और सम्मान कभी कम नहीं होगा। मधुरिमा कार्यक्रम के माध्यम से अपनी प्यारी बहन से कहना चाहता हूँ, आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरे सबसे बड़ी ताकत है। आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों को भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी लगाए सभी बहनों को मेरी तरफ से एक गाना सुना दीजिए, फूलों का तारों का सबका कहना है, फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से।

तो दोस्तों ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से, जो कि सन 1972 में रिलीज हुई थी। और इस गीत में आवाज है किशोर कुमार की और इस गीत के गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार है आर डी वर्मन। इसी तरह ये पत्र है सीमा अधिकारी, जो कि धरान सुनसरी की रहने वाली हैं, वो लिख रही हैं, नमस्कार मधुरिमा, मैं सीमा अधिकारी धरान से आपकी कार्यक्रम की श्रोता हूँ। आज का मेरा पत्र मेरी प्यारी माँ के नाम है। माँ से दूर रहने पर उनकी अहमियत और भी ज़्यादा महसूस होती है। उनकी ममता, उनकी डांट और उनका प्यार आज भी मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। मेरी पसंद की दो पंक्तियाँ, माँ की दुआओं में ऐसी ताकत होती है जो टूटे हुए इंसान को भी संभाल लेती है। मधुरिमा में मेरी फरमाइश है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है ओ माँ। फिल्म राजा और रंग का गीत, ये गीत मैं अपनी माँ को समर्पित करती हूँ। माँ हमेशा स्वस्थ और खुश रहें, यही मेरी कामना है।

तो दोस्तों ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म राजा और रंग से, जो कि सन 1968 में रिलीज हुई थी। और इस गीत में आवाज है लता मंगेशकर की। इस गीत के गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये पत्र है अमित कुमार साह लाहन सिरहा से। ये लिख रहे हैं, प्रिय मधुरिमा नमस्कार, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मेरी प्यारी बहन अंजलि को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं अपनी बहन से दूर हूं, लेकिन बचपन में उसके साथ बिताए पल आज भी याद है। वो हर साल बड़े प्यार से मेरी कलाई पर राखी बांधती थी और बदले में मुझसे मनपसंद उपहार लिया करती थी। मेरी बहन हमेशा खुश रहे और उसके जीवन में सफलता और सुख बना रहे, यही मेरी कामना है। आज मधुरिमा में मेरी विशेष फरमाइश है, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। ये गीत मैं अपनी प्यारी बहन अंजलि को समर्पित करता हूँ। मधुरिमा के सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

तो दोस्तों ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म तिरंगा से। इसमें आवाज है साधना सरगम की और इस गीत के गीतकार है संतोष आनंद और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये पत्र है नेहा कुमारी जो कि विराट नगर मोरंग की रहने वाली है। वो लिख रही हैं, आदरणीय मधुरिमा परिवार सादर नमस्कार। रक्षाबंधन के इस खूबसूरत अवसर पर मैं अपने सभी भाइयों को ढेरों प्यार और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भाई बहन का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसमें प्यार के साथ थोड़ी नोकझोंक भी होती है। यही नोकझोंक इस रिश्ते को और खास बनाती है। मेरे दोनों भाई इस समय काठमांडू में पढ़ाई कर रहे हैं। इस बार मैं उन्हें राखी नहीं बांध पाऊंगी, इसलिए मधुरिमा के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं भेज रही हूं। मेरी फरमाइश है, भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, ये गीत मैं अपने दोनों भाइयों को समर्पित करती हूं। मधुरिमा हमेशा इसी तरह हमारा मनोरंजन कराता रहे।

तो दोस्तों ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म रेशम की डोरी से, जो कि सन 1974 में रिलीज हुई थी, और इस गीत में आवाज़ है सुमन कल्याणपुर की, और इस गीत के गीतकार हैं इंदीवर और संगीतकार है शंकर जयकिशन। इसी तरह ये पत्र हैं शिवाजी चौक कटनी मध्य प्रदेश भारत से अनिल ताम्रकार जी का। ये लिख रहे हैं, दिल लगाने को एक और जहां हर किसी का मन बेकरार रहता है, लेकिन दिल की रुसवाइयां, दिल की दीवानगी जिंदगी का एक हम पैगाम लेकर आती है। खुशियों के बीच में सपनों के हर एहसास जब दिल को कचोटने लगते हैं, जब दिल में एक टिस का एहसास करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मोहब्बत करना और निभाना बड़ा दुश्वार होता है। इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें। फिल्म का नाम है आंधी। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजन, रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यस और उनके मम्मी पापा। कार्यक्रम में ये गीत सुनाने की कृपा करें।

तो दोस्तों ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म आंधी से, जो कि सन 1975 में रिलीज हुई थी। और इस गीत में आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, और इस गीत के गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार है आरडी वर्मन। इसी तरह ये पत्र है पूजा साह जनकपुर धाम धनुषा से, लिख रही हैं प्रिय मधुरिमा कार्यक्रम नमस्कार। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मधुरिमा की पूरी टीम और सभी श्रोताओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार भाई बहन के प्यार और विश्वास का प्रतीक है। इस मौके पर मैं अपने प्यारे भाई रोहित को बहुत याद कर रही हूँ, जो इस समय विदेश में हैं। दूरी भले ही हो लेकिन हमारे बीच का प्यार हमेशा बना रहेगा। मेरी फरमाइश है राखी हर साल कहेले सवनवा में, ये गीत मेरे भाई को समर्पित है।

तो दोस्तों, ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म बिहारी बाबू से, और इस गीत में आवाजें हैं अलका याग्निक और मनहर उदास की, और इस गीत के गीतकार है ब्रिज किशोर दुबे। और ये कार्यक्रम का आखिरी पत्र है जो कि है आरती यादव जी का, विराटनगर मोरंग से। वो लिख रही हैं, प्रिय मधुरिमा कार्यक्रम, सादर नमस्कार। राखी का धागा प्यार का संदेश लाता है, भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर मैं मधुरिमा परिवार और सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे प्यारे और अनमोल रिश्तों में से एक होता है। बचपन की छोटी छोटी नोकझोंक, साथ बिताए हुए पल और एक दूसरे के प्रति स्नेह जीवन भर याद रहते हैं। इस वर्ष मेरा भाई पढ़ाई के सिलसिले में काठमांडू में है, इसलिए मैं उसके हाथों पर राखी नहीं बांध पाऊंगी, लेकिन दिलों की दूरी कभी नहीं होती। मेरी यही कामना है कि मेरा भाई हमेशा स्वस्थ, खुश और सफल रहे। मुझे राखी का कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए। मैं ये गीत अपने प्यारे भाई और दुनिया के सभी भाई बहनों को समर्पित करती हूँ। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, अपनी प्रतिक्रिया हमें पत्र के जरिए ज़रूर दें। साथ ही अपने पत्र में शेरो शायरी, कविता या गज़ल शामिल करना ना भूलें। हमारा पता है कार्यक्रम मधुरिमा, रेडियो नेपाल, सिंह दरबार, काठमांडू, पोस्ट बॉक्स नंबर 634। ईमेल पता है madhurimahindi@gmail.com। साथ ही फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी बातें इस कार्यक्रम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना होगा www.facebook.com/madhurima-hindi। तो ये कार्यक्रम का आखिरी गाना रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से प्राविधिक मित्र पुष्प रत्न वज्राचार्य जी के साथ मैं रमिता यादव आप सभी से इजाजत चाहती हूँ। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभ रात्रि।

देव भक्ति श्री पाद पृथ्वीनारायण सा दुनियालाई दर्शन दिए मनुके चुलामा रोग व्याध पीर कष्ट दुख हरण पाऊ पिछा सरकारको शरण भुवनर भूपन साका कुलामा उदाई मोतारी कौशिलाका गोखी जन्मन पा

श्याम सुंदर का आश्रय क्यों ले ले? क्योंकि मृत्यु के पश्चात माता पिता भ्राता पुत्र आदि कोई भी स्वजन तेरा साथ न देंगे, तेरा साथ एक ही देने वाला है और वो है तेरा श्याम।